विचारे गावन तुदनो जति सति संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदाना ले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पे आले गावन तुदनो रत्नो पाए तेरे अर्चर तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महावल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा करका रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए नजासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन पाई कर कर देख कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहपत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला

अभ्यंता। तेरे भक्त, तेरे भक्त सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी तब तापे जबे अभ्यंता। तेरे नेक पड़े वो सिमर सास जी कर क्रिया खटकर्म करंता। से भक्त पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता।

जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सगल प्रजाजने आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमोद कियो।

प्रकट के पट पट की जान जब उत्कर्क करा करतारा प्रया तरत तम दे अपारा जा बया करक करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सबू जेते बदन से सब धारै

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत सुर्गवास रघुवर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ए कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट नावे विष्णु भक्त की ये फल होई याद व्याद स्वय सके न कोई सम्मत सत्रह

पंजवम थाल विस्तिन वस्तु पेयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पेयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हुए उधारो ए वस्त तजी न जाए नित नित राख उधारो तम संसार चन लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाई मैनू जो कितोई मैं निर्गुण हरे को गुण नाई आपे तरस पियोई तरस पिया मैं राम तोई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मंथी वैरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोई ना कोई ना है ओथे तेरी राख अग्नि उधरमा है सुनके जमके दूत नाए तेरे छट जाहे पाओ जल बिकम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगे प्यास अमृत से खाहे काल में हो पुन गुण गोविंद गाए सबसे नु कृपाल सुमहले साहे साहे बिरथा कोय न जाए जे आवे तुद आए श्लोक महला पंजवम अंतर गुर राधना जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुण नाओ सतगुर सेती रत्या दरगे पाये ठाओ कौ नानक कृपा करे जिसनु ए वथ दे

स्वार्यन आप दयाल मनो नाम सारियन साजना के संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खेन माहिब दारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

0: वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरियाए कर नौन दयावे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान करके बोलना जी
1: वाहिगुरु।
0: पंजां प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी
1: वाहिगुरु।
0: जिना सिंह सिंघनिया ने धर्म हेत सीख दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध के सां सुवासां संग निभाया। तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान

जेठ हाड़ का महीना हो सारे सियाने बैठे हो तो आदमी धूनी तपा के बह जाए अग दे अग सेक दे बह जाए तपस्या है शरीर में कष्ट देना है योगी करते ने इधर यह धार्मिक परेशानी उधरों शीतल हवावां चल दिया होन बर्फ पैंदी होवे ते कहिंदे ठंडे पानी के घड़े जड़े ने मेरे सिर ते पाओ यह तपस्या है। गुरु कहिंदे ने इदां करन दे नाल कोई रब मिलदा बिल्कुल नहीं मिलता। गुरु ने कहा तौ कारण साहिबा रंग रते हे परमात्मा तेनू पाण वास्ते लोक किन्ने दुखी हो रहे इसे नू बदलवे रूप दे विच भगत कबीर साहिब अपने

नामदेव जी द्वारा उच्चारित शब्द कल प्रसाद साहब जी ने भी इसका कीर्तन किया, दास भी कोशिश कर रहे हैं।

2-3 मिनट से शब्द के दायरा च पढ़ रहे हैं क्योंकि राग दरबार है ते राग विद्या जड़ी पहला द्रुपद धमार ने संभाली, ख्याल ने संभाली, ठुमरिया ने भी संभाली और साढ़े गुरु पातशाह ने तो उन्हों ऐसा स्थान दे दिता कि वो सदा सदा ले जुगां जुगां तक संभल गए क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का आधार ही सारा

कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुम रह सूत्र तहारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहे गुरु एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सबन खजाए तेग बहादुर सिमरया कर नौने दयावे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारिया चौहान साहब जादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वन के शकिया देव चलाई तेग वाही देह के अमृठ कीता तिना प्यारिया सचारिया दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी सदके सवासन संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रक्षा रियाज देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाहु दान प्रसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा माननी वाह मत उची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियोटियां दी ओढ़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी आप जी ने कृपा रहमत की आप दी पावन हजूरी वे शाम दे सुंदर दीवान सजे हन सजे हुए दीवाना विच गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी दे कीर्तन सच्चे पातशाह छे पौड़िया आनंद साहिब दा जाप होया है कृपा करनी पातशाह जी ओ समुचिया सेवावां निभाउंदिया होया फुल चुग दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल भेटावां प्रवान करनिया धर्म करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी बख्शियां खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हर राय आप जी दा सीत प्रसाद ज्यो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया आमदा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।

प्रभ पय सहाय सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तूण है छुट है निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा मन मह चितवो चितवनी उद्यम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत। सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ताखिए करते का हो विचारो तित कर गाहो सोयला सिवरिहो सृजन हारो। तुम गाहो मेरे निर्भो का सोयला हमारी जित सोहेले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जेड़े समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाहो तेल देहो सज्जन सिसड़िया ज्यो हो ऐसा सिउ मेल। कर कर ए पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। रागा सा महला पहला छह कर छह गुर छह उपदेश गुर गुर एको सनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वड़ाई तोए रहाओ। विश्वे चसियां कड़ियां पैरा थिती वारी महो होवा सूरज को रुतनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला गगन मैं ताल रव चंदीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मलियान लोपण चौरो करे सगल बंदराई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भोखन्ना तेरी आरती अनता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहस्तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही। सहस पद विमल अनेक पद गंध बिन सहस तव गंध एव चलत मोही।

पापक मरण मन जाना बद नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास काई कूड़ न परल पकारा न जानो बैकुंठ द्वार कमीर अब कहिए काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़ बंका पाई दौर कूड़ यार तेवर खाई राव पांच पचीस मोह मद मत सारे आडी पर बल माया जन कबीर को जोर न पहुंचे का कर रग राया काम गुवारी दुख सुख दरवानी पापन दरवाजा कृपदान महाबड दुंदर तय मन मवासी राजा स्वाद सना पोट ममता को कपुद मान चढ़ाई तिसना तीर रे गढ़ पीतर यू गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत भाई गुला ज्ञान चलाया ब्रह्म अग्न सज प्रजा लिए कचोड़ सजाया सत संतोख ले लरने लागा तोरे दु दरवाजा सात संग दे हरे गुर की कृपा ते पकरो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन की कटी काल पह फासी दास कमीर चढ़ो गढ़ ऊपर ला राज लियो अबनासी गंगू सैन गैर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर मन न डेगे तन काहे को डराए चरण कमले चित रहो समाए रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर कहे कमीर को संग न साथ जल तल राखन है रघुनाथ पैरो कबीर जीव अष्टपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अगम दुर्गम गाड़ रचो बास जा मह जोत करे प्रकाश बिजली चमका होय आनंद जय पौड़े प्रबाल गोबिंद यह जो राम नाम लेव लाग जरा मरन छूटे भ्रम भाग रहाओ अबरन बरन से मन ही प्रीत होमे गावन गावे गीत आनंद शब्द होत चुनकार जे पौड़े प्राप श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रिस्थान तीन त्रिखंडा अगम गोचर रह अभ्यंत पार न पावे को तरनी तर मंत कदली पोप धूप प्रकास राज पंकज मह लियो निवास द्वादश दालया भय अंतर मंत जह पौड़े श्री कमला कंत अर्ध उर्ध मुख लागो कास सुन मंडल मह कर प्रगास उहां सूरज नाही चांद आद निरंजन कर आनंद सो ब्रह्मांड पिंड सो जान मन सरोवर कर स्नान सोहं सो जाको है जाप जागो लिप्त न होए पुण्य अर पाप अवर्ण वर्ण काम नहीं साम अवर्ण पाइय गुर की साम टारी न टारे आवे न जाए सुन सज में रहो समाए मन मत जान जे कोई सो बोले जो बोले सो आपे होए जोत मंत्र मन स्थिर कर कबीर सुप्राणी तर कोड़ सूर जाके प्रतहार कोड़ महद्वार कोड़ सूर जाके प्रकाश कोड़ महद्वार कबलास दुर्गा कोड़ जाके मर्दन कर ब्रह्म कोड़ वेद उच्चर जो जाचो तो केवल राम आन देव सो नाही काम रहाओ गुड़ चंद्र में करह चराहक सुरते तीसो जेवह पाक नाव ग्रह कोट ठड दरबार धर्म कोट जाके प्रतहार पवन कोट चौबर फिर हे बस कोट सेज बिस्थर हे समुद कोट जाके पनिहार रुमल कोट अठारे पार कोट कमेर पर भंडार कोट गलाकमी कर सिगार कोटक पापन बहिर हे इंद्र कोड़ जाके सेवा करहे सुमन कोड़ जाके प्रतहार नगरी नगरी ख्यात पार लछूटी व्रत बेकराल कोड़ गल खिल गोपाल कोड़ जग जाके दरबार गद्रव कोड़ करह जयकार विद्या कोड़ सब गुण कह तू पार ब्रह्म गंत न लह बावन कोट जग रोमावली रामन सैना जय तय सली सज कोट बोह
कहत पुराण दर्दो दर्जोधन का मथया मान कंद्रप कोट है जाग लवन तरहे अंतर अंतर मनसा हरहे जगबीर सुन सारंग पान देह पै पाद मांगो दान पैरो बाणी नाम दो जियो की घर पहला को ओंकार सतगुर प्रसाद रजेबा करो सत खंड जमन उचरत श्री गोबिंद रंगीले जय बार कनाए सुरंग रंगीले हर हर त्याय राव मिथे जेवा मुरे काम निर्वाण पादे कर को नाम संकोट अन पूजा करी एक न पूछ नाम हरी प्रणव नाम दे ओ करना अनंत रूप तेरे नारायणा पर तन पर दारा पर हरी तग निकट बस नर हरी जो न भजंते नारायण तिनका मैं न करो दर्शन रहाओ जिनके भीतर है अंतर जैसे पास तैसे हो नरा प्रणव नाम दे नाके बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध करो दूध कटोरे गडवे पानी कपिल गाए नाम दुहयानी दूध पियो गोबिंद राय दूध पियो मेरो मन पतियाए नाही तो घर को बाप रिसाए रहाओ सोइने कटोरी अमृत पहरी ले नामे हरे अगे तुहरी एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हसै दूध पिया भगत घर गया नामे हर का दर्शन पाया मैं बावरी मेरा राम पतार रच रचा को करो सिगार भले नंदो भले नंदो भले नंद लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ बाद विवाद का उसे न के जय रसना राम रसायन पी जय आप जी जाने ऐसी बने आई मिलो गोपाल इंसान बजाई उसने अंधा करे नारे कोई ना मैं श्री रंग भेट लसोई कुकबीर कबू खीर खाड़ी न पावे कबू घर घर ठूक मंगावे कबू कबू कूरन चने बिनावे जो राम राखे तो रही रे पाई यार कि मैं किस कथन न जाई रहाओ कबू दुरे दुरंग न चावे कबू पाई पानी हो न पावे कबू खाट सफेदी सुवावे कबू भूम प्यार न पावे पर नाम दो एक नाम निस्तार जो गुरु मेले दे पार उतार हस्त खेल तेरे दोहरे आया भगत कर नामा पकड़े उठाया हिंगड़ी जात मेरे जात मुराया ऐसे बिग जन्म काय को आया रहाओ ला कमले चले पलटा आए दोरे पाछ बैठा जाए जो जो नाम हर गुण उचरे भगत जना को दोहरा फिरे पहरो नाम दियो जी हो कर दू जाए को ओंकार सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत नाज त्रिगवंत जल सेती काज जैसी मूड़ कुटांब प्राण ऐसी नम प्रीत नारायण नम प्रीत नारायण लागे सस भाई बैरागी रहाओ जैसे पर प्रगरत नारी लोभी नर तन गाय तो कारी काम कामनी प्यारी ऐसा नम प्रीत मुरहारी सही प्रीत जे आपे लाए गर्भसाहित जाए कब हूँ कब न टूट सरे असमाए नाम चित लाया सच नाए जैस प्रीत बर गिर माता ऐसा हर सेती मन राता पण नाम दो लग प्रीत गोबिंद बस है हमारे चीत कर किनारे त्याग अंधा परम नारी सुख काल तंदा जैसे सिमल देव सुआ भिक्षा अनंत की बार मुँह लपटाना पापी कारक ने माँ हेम जल तुरे मिटवे कपना हेराव हर भगत न देख जाए मार्ग छोड़ मार्ग पाए मूल भोला व जाए अमर डार काहे बेख खाए जो बिस्वग पर खार कपर पहर करे सिंगार पूरे ताले निहाले सास बाग गले जमका है फास जाके मस्तक लिखियो कर्मा सो भज पर है गुर की सरना कहत नाम दियो इह विचार इन भेद संतो उतरो पार संडा मरगा जाय पुकारे बड़े नहीं हमी पच हारे राम कह कर ताल बजावे चटिया सब बिगारे राम नामा जप वो करे हृदय हर जुग सिमरन तारे रहा बसदा बस किन्नी सब राजे मिन जिगरे पटरानी भूत प्रहलाद कह नहीं माने तंत और ठानी दुष्ट सभा मेल मंत्र पाया कर से उदकनेरी गिर तर जल
ਜਵਾਲ ਭੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ ਕਾਢ ਖੜਗ ਕਾਲ ਭੈ ਕੋ ਪਿਓ ਮੋਹੇ ਬਤਾਓ ਜੋ ਤੇ ਰਾਖੈ ਪੀਤ ਪਿਤਾ ਅੰਬਰ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਧਣੀ ਥੰਮ ਮਾਏ ਹਰ ਭਾਖੈ ਹਰ ਨਾਕ ਜਿਨ ਨਖੇ ਬਿਦਾਰਿਓ ਸੁਰ ਨਰ ਕੀ ਅਸਨਾਥਾ ਕਹਿ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਮ ਨਰ ਹਰ ਤਿਆਵੇ ਰਾਮ ਭੈ ਪਦਾਤਾ ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਛ ਸੁਨ ਬੇ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਤੁਮਾਰੇ ਕਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ

लो तो दो जग भरो दिन छोड़ दुनिया को भरो भाव बेड़ी हाथ ताल ना मंगवावे गुण गोपाल गंग जमुनी जाओ उल्टी बाहे तो नामा हार करता रहे सतगड़ी जब बीती सुनी अजो न आयो त्रपण दैणी पाखंतन बाज बजायला पाखंतन बाज बजायला गुरजड़े गोबिंद आयला अपने भगत कर की प्रतपाल गुरजड़े आए गोपाल कहे ता धरण कोटि करो कहे ता लेख रूप रतारो कहे ता मोह कहे ता मोई गऊ दो जी आए सब कोई देखे पति आए नामा प्रण मसेल मसेल गौ दुहाई बछरा मेल दूध देह दो जब मटके परी ले ना ले बादशाह के आगे तहरी बादशाह महल में जाए अकट की घाट लागी आए काजी मुल्ला बिनती फुरमाए बख्शे हिंदू में तेरी गाय नाम कहे सुन बादशाह एक से पतिया मुझे दिखाए इस पतिया का एह परवान साच सील चल सुल्तान नाम दे सब रे समाए मेले हिंदू सब नामे पह जाए जो आपकी बरन जीवे गाए ता नाम देव का पतिया जाए नामे की कीर्त रही संसार भक्त जना ले उदरिया पार सगल कलेश निंदक पया खेद नामे नारायण ना ही भेद कर दूजा जो गुरदत मिले मुरार जो गुरत उतर पार जो गुरदेव ता बैकुंठ तर जो गुरदेव तय जीवत महर सत सत सत सत सत गुरदेव चूड़ चूड़ चूड़ चूड़ आन सब सेव रहाओ जो गुरदेव ता नाम दृढ़ाव जो गुरदेव न देह दस्ताव जो गुरदेव पंच ते दूर जो गुरद निर्भो चूर जो गुरदेव ता अमृत बानी जो गुरदेव ता कथ कहानी जो गुरदेव ता अमृत देह जो गुरदेव नाम जाप ले जो गुरदेव पवन त्रै सूज जो गुरदेव ऊच पद पूज जो गुरदेव तीस कास जो गुरदेव सदा साबास जो गुरदेव सदा बैरागी जो गुरदेव पर निंदा त्यागी जो गुरदेव बुरा पलायक जो गुरदेव ललाट लेख जो गुरदेव कंध नहीं हेर जो गुरदेव देहरा फेर जो गुरदेव ता छापर छाई जो गुरदेव सहजनिक साई जो गुरदेव ता अड़सठ नाया जो गुरदेव तन चक्र लगाया जो गुरदेव ता द्वादश सेव जो गुरदेव पै बेख मेवा जो गुरदेव ता संसा टूट जो गुरदेव ता जम ते सुट जो गुरदेव ता पावजल तेरा जो गुरदेव ता जन्म नामा रह जो गुरदेव अड़दस व्यवहार है जो गुरुदेव ठर पार है बिन गुरुदेव अवर नहीं जाई नाम देव गुर की सरनाई पैरो बाणी रविदास जीओ की घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिन देखे उपजे नहीं आसा जो दिस होए बिनासा बन सहत जो जापे नाम सो जोगी केवल निकाम परच नाम रवे जो कोई पारस परस दुबदा न होई रहाओ सो मन मान की दुबदा खाए बिन द्वार त्र लोक समाए मन का स्वभाव सब कोई कर करता होए सो अन पैर है फल कर्ण भूल बंदराए फल लागा ता फूल बिलाए ज्ञान कारण कर्म अभ्यास ज्ञान पाया ते कर्म नाश कृप्त कारण दद मथ सयान जीवन मुक्त सदा निर्वाण कर उदास परम बैराग हृदय राम की ना जप स भाग नाम देव आओ कलंदर केसवा कर उदाली पेशवा रहाओ जिन आकाश कुल सिर की नी कौस सब्द प्याला ਚਮਰਭੋਸ ਕਮੰਦਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਦ ਇਹ ਬਿਦ ਬਨੇ ਗੋਪਾਲਾ ਛਪਨ ਕੋੜ ਕਾ ਪੈਨ ਤੇਰਾ ਸੁਲ ਸਹਿਜ ਜਾਰਾ ਪਰ ਟਾਰ ਮੁਦਗਰ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ ਦਹਿ ਮੈਂ ਜਦ ਮਨ ਮੋਲਾਨਾ ਸਜ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰ ਬੀਬੀ ਕਹਲਾ ਸੁਖਾਨ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਭਗਤ ਕਰ ਤਹਿ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਸੁਨਾਇ ਕਹਿ ਪੈ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰ ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਫਿਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦੇ ਸਵਾ राग बसंत महला पहला कर पहला चुप दे दुतुक एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपा निर्वैर अकाल मूर्त जूनि सह भंगुर प्रसाद महा महा ममार की महा महा ममार की चढ़िया सदा बसंत

थे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत आज उन्हें सहभंगोर प्रसाद जप आद सच युद्धाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाह गुरु वाह गुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कबू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है साध कह संग। जे मार के गन जाए न कोसा, हर का नाम असंग तोसा। जय पेंडे महान दुगबारा, हर का नाम संग जे आरा। जहां पंथ तेरा को ना सियानू, हर का नाम तेनाल पछानू।

कै नाम जन को तृप्त भगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कपरे न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत किछु नाहि बिजोग।

हर हर जन कहे और सतानी, हर प्रताप जने अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत पर नहीं छपे। हर की भगत मुक्त भव करे, नानक जन संग किते तरे। पार जाते हर को नाम, कामते हर हर गुणगाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दन दुख लता। नाम की महिमा संत हृद वसे, संत प्रताप दुर्थ सब नसे। संत का संग बड़ भागी पाइये, संत की सेवा नाम ते आइये। नाम तुल कछे अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। श्लोक श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल। पूजिस नाही हर हरे, नानक नाम मो। धर्म धर्म किरिया, सकल त्याग बन मदे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हुमे बहु रतना। सीर कटाए हुमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवे, महावदास तपी सिर थीवे। अगन माहे ओमत प्राण, कनक सब है भरपूम दान। न्योली कर्म करे वो आसन, जैन मार्ग संजम यत साधन। निमक निमक कर सीर कटावे, तो भी होमे मैल न जावे। हर के नाम संसर कृष नाहे, नान गुरमुख नाम जपत गत पाए। मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्व गुमान न मनते हुटे।

जय प्रसाद से जय मन आठ भैर ताका जस ग विजय जय प्रसाद सबको माने मुक्ता को जस रस मकाने जय प्रसाद रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जगत दगे मान पावे नानक पासे ती कर जावे जय प्रसाद हो कंचन दे लिवलावो तुझ राम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल सिद्ध ढाके मन सरणी पर ठाकर प्रवता के जय प्रसाद तुझको नाम पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद भूखन बहरी जय मन

साध के संग मुझे प्रभ नेरा साध संग सब होतन मेरा साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बढ़ने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पुर फुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध

तह बड़ राजा कहूं भेखारी नीच का साजा कहूं अब कीरत में आवे कहूं भला भला कहावे ज्यों प्रभु राखे तिवी रहे गुर प्रसाद नानक सच कहे कहूं।

जब्त मन होवत सुख, चिंता जाय मिटे अहंकार, ते जन को कोए न पहुचन हार। सिर उपर ठाडा गुर सूरा, नानक दागे कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाके, देश दर्शन वेख दू उदर श्रेष्ठ चरण कमन जाके, अनुभव सबल दर्शन सुंदर हर रूप। तान सेवा से प्रवान अंत जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसे सोत निहाल, दागे नित नावत काल, अमर पै अमरा पद पाया, सा संग नानक हर त्याया। श्लोक

कर्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बे संतर माए चार कुंड दै दिश समाए तिस्ते पे नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत में देख सचिय सूर नखत्र में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल न कबू डोले।

जाने की, अपने जाने अपने जी की। आप साजधारी सब साजोत बोत आपन संग्राह ताकि कदमत कही न जाए, दूसर होए तो सोजी पाए, तिसका किया सब प्रवान। गुरु प्रसाद नानक जान जो जाने, तिसरा सुख होए आप मिलाए ले प्रसोए।

संघ चित आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक

अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नजरी मुख द्वारे नानक वै जानिए सव्यापे सचार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए।

आए। ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए, मन ने मार्ग ठाक ना पाए, मन ने पासों पर गड़ जाए।

मन कोए। मन्ने पावह मुख द्वारो, मन्ने परवार साधारो, मन्ने तर तर गुरसिख, मन्ने नानक पवे न पिख। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोए। पंच परवान पंच प्रधान, पंच पावें दरगह मानो, पंच सोहें दर राजान, पंच का गुरु एक त्यान।

असंख जाप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास।

पर ये हाथ पैर तंदे पानी तो तय उतर के मूत पलीते कपड़ होए देसा बन लिया ओ हो तो होए।

स्वास बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मंचाओ कवण सो वेला भक्त कवण कवन थित कवण वार कवण सरुति महाकवण जतो आकार वेल न पाया पंडती जय हो वेले पुराण।

मनो न विसराय अंतना सेवते कहण नाय अंत अंतना करण देण नाय अंत अंतना वेखण सुन नाय अंत अंतना जाप्या क्या मन मंत्र

है। अमल धर्म अमल दीवाण अमल तल अमल परवाण अमल बक्षिश अमल निशान अमल कर्म अमल फरमान अमल अमल आख्या न जाए आखा आख लिवलाए आख्या वेद पाठ पुराण आख है पढ़ कर बख्याण आख है ब्रह्म आख है इंदो आख गोपित है गोविंद आख ईश्वर आख सिद्ध आख कित बुद्ध आख दानव आख देव आख स्वर्ण मुंजन सेव

नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब सचा सचे नाई, है पी हो सी दायनंदा सी रचना जन रचाई, रंगे रंगे पाते कर कर जिनसी माया जिन्यो पाई, कर कर वेख्या किता अपना जिवत दी वड्याई, जो तिस भावै सोई करसे हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पर साहिब नानक रहण रजाई, मुंदा संतोख शरम प झोली ध्यान के करै भूत, खिंथा काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीत,

ताकि अगला कतिया न जाए देखो कै पिछे बजताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सदा की सुध।

सोए। सचखंड वसै निरंकार कर करो वेखै न दरनिहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै तय अंत नयंत।

समस्त प्राजी समस्तम तेरा जोर चाची छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पै हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं भुजंग प्रजा छंद गादे वादे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ते निधान्य नमस्तम निर्नाथे नमस्तम परमाते नमस्तम गंजे नमस्तम पंजे नमस्तम काले नमस्तम अपाले नमो सर्वदेश नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो मा हे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते

सर दर्शन मोहन सर कृष्ण नमो सर रंगे त्रिभंगे नंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे खिजे पिजे समस्त प्रसिजे कृपाल स्वरूप कुकर्म।

सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पालेर्वाल शंतो प्रसाद आद्रूपनाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मंत्र मान देव आदुदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जतर तत्र विराजे

खेल खेल खेल खेलन अंत को फिर एक दे पेव न जाने जे वेद और कदेव रूप रंग न जात पा सुजानी के जेव तात मात न जात जाकर जन्मन बहीन चकर बकर फिरे चतुर चक मानी प्रतीन लोक चौदह के विखे जग जापी जय जाप देवनाद मूर्था पे सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पुण पुरख पार सर्व विश्व रचियो सुंब गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुभर्म रहत अपूत लख पेश अंग राग नारंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुख दाय काम आप रूप अमी करु सदेक पुरख वधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप स्यूत अंगहीन भंगनात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नेत भाव नित कोट सुन प्राण शास्त्र ना विभोचित मद पार छंद प्रसाद

चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए चाची छंद न सदरे न मित्रे न परम न मित्रे न कर्म न काये अजन्म जाये न चित्रे न मित्रे परे पवित्रे पृथ्वी से अधि से आदिर से अकिर से भक्ति छंद प्रसाद कत्ते के शिज देशे के बिज पैसे के गंज कर्मे के पंज भरमे के बिज लोके के दत सुके के वदूत भरने के विभूत करने के राजम प्रवाह के धर्म तुझाहे के शोक भरने के सर्वा भरने

चंद्रे के सर्व कली में के परम पई में के आकल लामे के साहेब कुलामे के सुन रजू है तमामल रजू है हमें सुल सलामे सली खुद मदामे गनीमल शकिस्ते गरीबल परस्ते।

प्रसाद नमो नरकनाशे सेम प्रकाशे नंगन स्वरूपे भंगम व्युते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाते गाद स्वरूपे निर्वाद भूते नंगी नाम त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोत्रे न पुत्रे न सतरे न मित्रे

समस्त जबाए के साहिब कराए के नरक प्रणास बैसल निवास के सर्व गवन है तमाम तमीज समस्त लजीज है।

मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्यान नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञान नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नाद विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आसा से नमो वम वंके

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणा से अगंजलो नामे समस्तल निवास काम विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्म प्रणा से धर्म विभूते सदा सदानंद सदरण प्रणा से क्रीम कुनिंदा समस्तल निवास जाय विभूते जाय विकनी में हरियं करियं क्रीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वंग स्वंग सरदा सब युक्त दुकाल प्रणा से दयाल स्वरूपे सदांग संगे भंगम विभूते

0: आसा महला पहला वासु का नार श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आसा जगी तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवा चिंद मानसते देवत किए करत न लागी वार महला दूजा
1: जय सौ चंदा उगवह सूर चढ़े हजार इते चादर होंदिया।

पापी रचियो ना हो दोई कुदरत साजी कर आसन डिठो चाओ दाता करता है तू तुझ देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दे ले से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ।

0: नर पाओ निरंकार सच नाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ भिन्नी रहन जिना मन चाओ
1: सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू

तलीखा जमेले दमस्तक लाई है कूड़ा लाल छटिए हो एक मन अलग त्याई है फलते वे हो पाई जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखे था तोड़ तिना दी पाई है।

हे नजनता के वश किछ नाही तुद वे की जगत उपाया एक नान तू में लैका बहुत खोआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आ बुझाया सहजे ही सज समाया सहजे ही।

0: आए कोहे बकरारिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तक न टूटे जय तक होवे जोर महला पहला
1: नाय मनिए पथ उपजै सलाए।

0: सो करे जित से रजाए सुध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु प्यारे साध संगत, बहुत बहुत धन्यवाद सत्कार योग जथेदार, जिहड़े आपां नूं लगातार महीना भर निहाल करदे आए ने। सतगुरु मेहर करन होर भी कीर्तन दीआं दातां बख्शण, अते इसे तरह सानूं निवाजदे रहन। दिन दा दवान जो है उसका समा इन्हां दा 12 बजे तो 1 बजे तक है। सो बेनती करांगा सारी माए पाए वध करके आ करके कीर्तन दा आनंद माणिए, गुरु की खुशियां प्राप्त करिए। सो आओ हुण जो अमृत वेले दा महावाक, साहिबां दा मुख वाक, उस दी विचार सत्कार जो भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी आपां नूं सरवण करवाणगे। अखीर दे विच फिर धन्नवादी हाँ सत्कार योग भाई साहब जीत सिंह जी लाडी जी कीर्तनी जथे दा। सतगुर कृपा करन बहुत ही मिलापड़े ने, प्यार वाले ने, हर थान जाके अपनी खुशियां बनते ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आओ कथा सुरन करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: वाहेगुरु जी, सतगुर आयो सरण तुहारी। मिले

असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल बड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़ियार कूड़े फेराहे असंख मलेश मल पख खाए असंख निंदक से

नीति सुरत न पाईया नदियां अतः वाह पवह समुंद न जानिया है समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन होना विसर है अंत न

आखे ईसरे आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानवे आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव केते आखे आखण पाहे केते कह कह उठे उठ जाहे एते कीते होर करहे ता आख न सकह केई के जे वड़ पावे ते वड़ होए नानक जाणै साचा सोए।

सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जे नरचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ताया अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत।

अनिल अनाद अनाहत जोग जोग एक उवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण काट काट वाजहनाद आप नाथ नाथी सब जाके रिद्ध सिद्ध अवर

का किया तमाशा जमन काल जोगी सब की ओ वेद राज ब्रह्मा ज्योति ओ जमन काल सब लोक सुहारा नमस्कार है ताय मारा जमन काल सो जगत बनायो देव दैत जशन पजायो आद अंत कै अवतारा सोए गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को मारी सकल प्र

कृपान उन्मांत मां मूढ़ कुछ भेद न जानत महादेव को कह सदाशिव निरंकार का चिंतना पे आप अपनी बुद्धि जति वर्णत पहन पहन तो तेती तुमरा लखाना जा पसारा कहवत सजा प्रतन संसारा एक रूप अनूप स्रूपा रंग पे हो राव के भूपांड जर से तिजकिनी तुझ खान बो रजदिनी कहूँ फूल राजा वह बैठा कहूँ सुन प्यो शंकर कैठा सगरी सृष्टि तकाय चंभ आजुगा स्रू स्वंभ अवरक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट।

देखो अर्था दुष्टो क्यों को जा करता श्री तुझा पै दे अल्लाह पूर्ण करा ग्रंथ काला मन वंशित फल पावे सोई दुख नत से व्याप्त कोई अड़ल सुने गुम जो जाय।

0: इतनी सेवा प्रवान करनी जी, कीर्तन कर दिया बना दे माफी बख्शनी। अगला प्रोग्राम सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: दीन दुनिया दे बाली, चवर तख्त दे मालिक, धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे हजूर दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु खालसा जी, आओ फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ऐतवार दे विशेष समागमां दे विच आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन निहाल कर रहे सन साडे बड़े सत्कारयोग भाई गुरप्रीत सिंह जी ते उन्हां दा जत्था जत्थे दा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो उपरंत आप जी नूं गुरमत विचारां राहीं निहाल करनगे साडे बड़े सत्कारयोग भाई कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वाले। अज साडे पास राय बिलाल भट्टी, सानू मैनूं लगदा किसी नूं भी नहीं पता होना ये कौन ने। राय बिलाल भट्टी यह उन्हां दे विरासत विचों ने जिन्हां दे पिता जी राय बिलार अहमद भट्टी, जिन्हां ने 100 मरबे ननकाणा साहब जिथे अजकल स्थापित है तलवंडी पाकिस्तान दे विच, ओह साडे पास 11:45 ते आ रहे ने। उन्हां दी विरासत विचों राय बिलाल भट्टी जिहड़े कि एक मुस्लिम ने, उन्होंने हले तक अपना जो गुरु नानक देव जी प्रति उन्होंने परिवार वालों प्यार वो अपना अज संगत के सामने दर्शन करे। सो सबनों बेनती है कि 11:45 पर वो साढ़े पास पहुँच रहे हैं। नाल ही दूजी बेनती करा जो पिंड बिलगा तो नगर निवासी दलाके दंगत वालों धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के ब्याह पुरग समागम हर साल फ्री माउंट किते जाते हैं। इस बार आने वाले हफ्ते 3 जुलाई को अखंड पाठ साहब आरंभ होंगे, जिन्हों के भोग 5 जुलाई को पैणगे। सो आप सब निम्रता सहित बेनती है कि इन्हों ब्याह पुरग समागम के आप अपने परिवार समेत जरूर हाजिरी लगवाओ। उस तो अगला हफ्ता जो पिंड पलाही साहब दंगत उस इलाके के समूह परिवार वालों धन धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश दिहाड़े की खुशी में विशेष गुरमत समागम 10 जुलाई को अखंड पाठ साहब आरंभ होंगे और 12 जुलाई को अखंड पाठ साहब के भोग पैणगे। सो आप सब नूं निम्रता सहित बेनती है जो ये साढ़े जुलाई के दो मुख बड़े प्रोग्राम होंगे ने, जिस विच सानू पार्किंग की अक्सर प्रॉब्लम आती है। पहला ही बेनती करिए कि जो पार्किंग का प्रबंध है 7 स्ट्रीट पर किया गया है, कोई भी बैक साइड जो स्ट्रीटा ने उत्थे गड्डी पार्क ना करियो, क्योंकि हर बार अनाउंस करते हाँ पर गड्डियां फिर भी टो हो जांदियां ने। इस करके अपनियां गड्डियां देख के पार्क करियो। सो इन्हें दोनों प्रोग्रामां दे विच अपने परिवारां समेत वध तो वध हारियां लगवाओ। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। आओ हुण साडे बड़े सत्कारयोग भाई कुलदीप सिंह जी दमदमी टकसाल वालियां पासों 11:45 तक गुरमत विचारा सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
2: वाहिगुरू जी मन मेरे हर के चरण रवीजै,

0: दस रहे वालों कीर्तन की समाप्ति है, होइया भुला चुकों की खिमा बख्शिश करनी। अरदास करो कि सतगुरु सच्चे पातशाह कीर्तन की दात बख्शिश करे, तवा नहीं बख्शिश करे, शरीर बख्शिश करे, जिस करके आपकी सेवा कर सकी है। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े वाणयोग बच्चे, प्यारे बच्चे, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चिया बेटी शमीत कौर और बेटी सहज कौर, स्नेहा कौर, मैं इन्हों का नाम अक्सर भुल जाना, माफ़ करना स्नेहा जी। तो ये स्टूडेंट्स हैं प्रोफेसर दलबीर सिंह जी दियाँ, बहुत पाखो बजाउंदियां हैं और बहुत अच्छा गाउंदियां हैं। पिछे इन्हों की आसा की वार भी सुनी सी, बड़ा मन प्रसन्न होया सी, बड़ा बजट दे विच बड़े चढ़दी कला दे नाल आसा दी वार कर रही सन। हुण भी कभी मौका बनया तो यह सब दस्या जी, असीं सुणांगे तुहानूं। तो बड़ी खुशी हुंदी है, खुशी खुशी लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। इन्हां ते नदर है, तुहाडी नदर है, गुरु की नदर है, परमात्मा की नदर है। और वली अल्लाह जिते प्रसन्न होवे सारी खलकत उत्ते प्रसन्न होंदी है। फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐतवार के विशेष समागमां दे विच आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन निहाल कर रहे सन साढ़े बड़े ही सत्कारयोग भाई सरबजीत सिंह जी लाडी, हजूरी रागी श्री दरबार साहब, ते उन्हां दा जत्था जत्थे दा बहुत बहुत धन्नवाद जो अज दे विशेष प्रोग्राम श्री राग अते राग तलंग नूं समर्पित राग कीर्तन समागम तीन दिनां लई उलीकिया गया सी। उस दिन दा इह अज आखिरी दिन है जिस विच साढ़े पास भाई सरबजीत सिंह लाडी तो इलावा प्रोफेसर दलवीर सिंह जी ते डॉक्टर अलंकार सिंह जी जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो साढ़े पास इन्हां प्रोग्रामां विच स्पैशल पहुंचे हुए हैं। नाल ही स्टेजां ते बैठ के इन्हां दे ही बच्चे सिखाए हुए प्रोफेसर दलवीर सिंह तो तांती साजां राही स्टेजां ते बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। भाई साहब जी दे कीर्तन स्टार्ट करन तो पहला एक दो जरूरी बेनतियां। शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का ब्याह पुरब जो पिंड बिलगा अते इलाके दीआं संगतां वल्लों हर साल फ्रीमाउंट कीता जांदा है, इस बार 3 तों लैके 5 जुलाई तिकर प्रोग्राम हो रहा है जो कि 3 जुलाई नूं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रब्बी बाणी दे अखंड पाठ साहिब आरंभ होणगे, जिन्हां दे भोग 5 तरीक नूं पैणगे। सो आप सब नूं नम्रता सहित बेनती है कि आप इन्हां प्रोग्रामां विच अपने परिवारां समेत वध तों वध हाजरियां दिओ।

मैं ते तुसें अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जिस तरह कनक है सोना, कटिक आभूषण सोने का बनया हुआ गहना, जिस तरह उन्हां च कोई अंतर नहीं है, इस तरह जल तरंग पानी है, जल है, उस विच कोई पत्थर कोई चीज गिरदी है तो किस तरह तरंगा बन दिया ने। जल ते तरंग वखरे नहीं हो सकते, सो आप जी भी अते मैं एक मिकी हाँ, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। गुरु नानक पातशाह ने जदों एक ओंकार दा सुनेहा दिता तां उन्होंने सारा कुछ, वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ ह्यूमनकाइंड, कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई कुछ नहीं, उन्होंने कहा सारे एक ही हाँ। सो जिथे जिथे भी महाराज जी गए ने, देखो उन्होंने उत्थे जाके उत्थों के महापुरखां भगतां जिहड़े भी उन्होंने मिले उन्होंने बाणी एकत्र कीती। पिछे जे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय जिन्हों कहिंदे ने, उत्थे एक सैमीनार होया कबीर जी दे उपर, दास नूं भी उत्थे जाण दा परचा पढ़न दा कीर्तन करन दा मौका मिलिया। उत्थों एक गल उपर की आई कि कबीर जी दा जिहड़ा ग्रंथ कबीर पंथी बीजक नामक ग्रंथ है, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਜੈਦੇਵ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ 11th-12th ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, 12th ਸਦੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ। ਸੋ 15 ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ, 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ, 4 ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ।

पातशाही चौथी धन धन श्री गुरु रामदास जी द्वारा केवल दो शब्द उच्चारित हन राग कितारा सिरलेख अधीन उन्हां चो एक शब्द मेरे मन हर हर गुण कहोरे सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो इन विध मेरा हर प्रभ लहोरे। आओ सारे मिलके इस शब्द का कीर्तन करिए। पिछले दिन पिछले साल राग दरबार जदों गुरु रामदास जी के गुरपुरब तो पहला हुंदा एक दिन तो उत्थे दास नूं इह शब्द दा कीर्तन करन दा मौका प्राप्त होया।

पावन शब्द गुरु नानक पातशाह द्वारा उच्चारित जिस विच ओ भाई लालो नूं संबोधन करके बाणी दी रचना कर रहे हैं। जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। जदों बाबर ने हमला किया उदों गुरु पातशाह कह रहे ने पाप की जन लै काबलों ताया जोरी मंगे दान हे लालो। आओ इस शब्द का कीर्तन करिए जी।

समाप्ति है। कोटानकोट शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्होंने दास हूँ इस पावन स्थान पर सेवा का सो अवसर प्रदान किया। समूह प्रबंधक साहबान, कमेटी मैंबरान, सारे जिहड़े साथी जिन्होंने इत्थे तीन दिन सेवा निभाई दास के नाल, होर सारे कीर्तनियां के नाल, आप समूह साध संगत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आओ श्री आनंद साहब जी दी बाणी विच छे पौड़ियां दा जाप करिए, जो मर्यादा है। इसे तरह मैनू क्या मैं लगे शायद पढ़ना, फिर एक शब्द दो मिनट से करके श्लोक पढ़ने, है ना, क्योंकि आनंद साहब नूं 5-6 मिनट असीं ला देने सी।

0: इस तो उपरांत एक दो जरूरी बेनतियां जो पिंड बिलगा इलाके दियां संगतां वल्लों सलाना पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के ब्याह पुरब का समागम आने वाले हफ्ते होने जा रहा है। सो इस विच आप जी नूं निम्रता साहिब बेनती की जाती है कि आप इन्हां प्रोग्रामां विच अपने परिवारां समेत वध तों वध हाजरियां दिओ। नाल ही जो उस तो अगले हफ्ते पिंड पलाही साहब के इलाका निवासी संगतों वालों धन धन श्री हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश दिहाड़े की खुशी में विशेष गुरमत समागम जो 10 तो लैके 12 तरीक तक उलीके गए हैं। सो आप सबनों निम्रता साहब बेनती है कि आप इन्हों प्रोग्रामों में अपने परिवारों समेत वध तो वध हाजरी लगवाओ। नाल ही बेनती करा कि सानू अक्सर इन्हों बड़े प्रोग्रामों के पार्किंग की बहुत वड्डी प्रॉब्लम आती है। सो गुरु घर वालों वड्डा उपराला 7 स्ट्रीट पर पार्किंग का प्रबंध किया गया है। उत्थों शटल गुरु घर लई चलेगी तो आप अपनी गड्डी उत्थे पार करके शटल राही गुरद्वारा साहब आ सकते हो। नाल ही जो बैक साइड ते स्ट्रीट्स ने गुरद्वारा साहब दे उत्थे अपनी गड्डी कोई भी पार्क ना करया करो क्योंकि हर वार 7 to 10 तक गड्डियां उत्थों टो होंदियां ने जिन्हां दा 600 तो लैके $700 का टोइंग का खर्चा है। इनिया बेनतियां प्रवान करो। आओ हुण आपां भाई गुरप्रीत सिंह जी तो आनंद साहब सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: सतनाम।

अनंत सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संता पुत्रे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुन।

सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, काल क्लेश तन महे मिटावो, सिमरो जास विसंग परे कै, नाम जपत गणत अनेकै, वेद पुराण सिमरत सुधाखिर, कीने राम नाम एक आखिर, किनका एक जिस जीव बसावै, काता की महिमा घनी ना आवै, कांखी एक दरस तुहारो, नानकुन संग मोहे उधारो, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम, रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन डरै, प्रभ सिमरत कश बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै, प्रभ कै सिमरन भाव न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निधान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन

रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मन जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्राम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए करतब प्रीत भसम संग होए आंध कूप में पतत बिकराल नानक काढ़ लिहो प्रभ दयाल करदूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेक अंतर मल माया शप सुनाहे कछ

आचार व्यवहारी जिस प्रभु को सास सास्य तारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सुमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुनह करन नाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस कर चलहे जय प्रसाद संपूर्ण फलहे। जय प्रसाद पाठ प्रणंबर हंधावहे जय प्रसाद परम गत पावे। जय प्रसाद सुख सहज समावहे ऐसा प्रभ त्याग वर कत लाग हो। गुर प्रसाद नानक मन जाग हो। जय प्रसाद तू

कई कोड भेद केसर होते, कई कोड तपीसर होते, कई कोड आत्म ध्यान धार हे, कई कोड कब का विचार हे, कई कोड नवतन नाम त्याव हे, नानक करते का अंत ना पाव हे, कई कोड भय अभिमानी, कई कोड अंध ज्ञानी, कई कोड कृपन कठोर, कई कोड अभिग आत्म ने कोर, कई कोड पर दर्भ को हिर हे, कई कोड पर दुख ना करहे, कई कोड माया श्रम आहे, कई कोड परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जान करता रचना, कई कोड सिद्ध जति जोगी, कई कोड राजे रस भोगी, कई कोड पंखी सिरप पाए, कई कोड पात्र बृख निपजाए, कई कोड पवन पानी बैसंतर, कई कोड देश भूमंडल, कई कोड सस्यर सूर नखेतर, देव दानव इंद्र सिर, कई कोड देव दानव इंद्र सिर शतर, सकल समगरी अपने सूत तार, नानक जैस जैस भाव तिस तिस तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमर

कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश कई कोट मागे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होया आप सुपर सन नानक तेजन सदा धन धन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत किन्नो विस्थार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट किन्ने भोपांत प्राप्त हो प्रभ माय समात ताकांत न जाने कोई आपे आप नानक प्राप्त सोए।

आत्म रासुक सह समावहे। अपने जन को सास सास मारे, नानको परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए। नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करण जोग, जो तिस भावै सोई होग। खिन मै थापो था पनहारा, अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तारा तार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार।

संत की निंदा नानका बहरे बहरे अवतार अष्टपदी संत के दुखनार जकट है संत के दुखन जम दे नहीं छुट्ट है संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक मह पाए संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा तेहीन संत के तिको रखे ना कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन क्या काग जो लवै संतन के दुखन सिर्फ जोन पाए संत के दुखन तिरत जोन करमाए संतन के दुखन तृष्णा मै जलै संत के दुखन सब कुछ हलै संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत भावै तौए भीकत पाहे संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक खिंडिक न पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर।

मन मेरे तिन की ओट लिहे मन तन अपना तिन जन दिहे जन जन जन जन अपना प्रभु पुछाता सो जन सर्व थो का दाता तिसकी सरन सर्व सुख पाव है तिसके दर्श सब पाप मिटावे अवर स्यान सगली शाड़ तिस जन की तू सेवा लाग।

सो प्राप सम्राथ दृढ़ कर गहो हो नाम हरवाथ इहोतान संचो हो अपगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आसरा खो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंड तावहे सो तन हर सेवा तेह पावहे। जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत। जिस शोभा को करहे भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी। ना अनक पावी रोग न जाए रोग मठिया रब कद लाए।

आप कथै आप सुन निहार आपे का विस्तार जात सुभावै तां सृष्टि उपाय अपने भाणे लय समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सक सृष्टि का जेता जी जंत्र सब ताक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ।

ठा सगस मिगरि एकस कट माहे अनक रंगना ना दृष्टा है नावनिद अमृत प्रभ का नाम देहि मैसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन ना जाय अचरज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप देखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट ब्याप रहया भगवंत धरन माहे आकाश पाए आल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल।

प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मह देख ससियर सूरन खेतर मेक। बाणी प्रभु की सब को बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल।

आस अनित त्यागो तरंग संजना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहो साध सागंग साध संग अगन सागर तरहो हार धन के भर लियो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहजानंद साध संग भज परमानंद।